0: भैया हमरा हाल का है।
1: बताए दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में।

0: राणा जी खबर पक्को है, वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर

0: क्या हुआ माया?
1: डर लग रहा है, तुम्हें कुछ हो गया तो?
0: मुझे? सिली गर्ल, मुझे क्या होगा? दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

0: क्या लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले मेरी क्या बात है
1: आए हैं दूर से।
2: A special shout out to Lisa says they're loving every bit of it here.

बंद करो, ये राग बंद करो बाबा। ये गाना यहां मत गाया करो, इन दीवारों से टकरा कर तुम्हारी दुआएं लौट जाएंगी। इस घर में ये फलने फूलने वाली नहीं है। अपनी दुआएं जाया ना करो बाबा। ये लो,

0: ये चमत्कार बॉबी ने किया है डॉक्टर। इस अंधेरे घर को इसने उजालों से भर दिया है। अब मैं जीना चाहता हूँ।
1: भूखे गरीब की
0: बाबा जी यही दुआ। बहुत दिनों के बाद आए।

0: क्षमा करना, भूल हो गई, अब नहीं गाऊंगा।
1: क्यों नहीं गाओगे? जरूर गाओगे बाबा, रोज रोज गाओगे। बाबा तुम्हारी दुआएं इस घर को रास आ गई। गाओ।